आकाशवाणी इम्फाल ngasi thawan gitara nipani panba sakap talishnga maga chamapan nifunipan ningthau ka banumid august kitang kuntra mathoi english singani kuntaruk ayukipung manga makhai ta kibagaluinena आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल की थरम संदोक पहुंचरी संदोक चरी मेगाहर्ट्ज चामग हुम दसमिंग मंगा थरम ताबिरी पूम नमकपू तराम नोक चरी खुरुम चरी

मथे गहुम नाई बा जगत की मबुंगो ब्रजगी गोपाल जसोदा रानी की मचाई बुंगो नगुन तबु सोंजरी ने ननाईना।

0: उठे। अरे उठो तो, सुबह की ठंडी हवा लगते ही शरीर ताजा हो जाएगी। अरे सुनाई नहीं दे रहे क्या? गांधोई उठो, तुम दोनों मुझसे पढ़ने के लिए कह रही थी ना। भाभी भाभी, बच्चों को।
1: हाँ हाँ सुन रही हूँ, मैं उठा देती हूँ। अरे उठो तुम दोनों, तुम्हारी बुआ ने तो चाय भी पी ली है, तुम दोनों का इंतजार कर रही है।
2: उठता हूँ माँ।
1: गांधोय चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, जल्दी आना, देर मत करना, और ये दूध पीकर बाहर आंगन में बैठो, तुम्हारी बुआ नाराज हो जाएगी।
2: जी माँ। गांधोय, ओ गांधोय, जल्दी आ जाओ, खत्म कर लेते हैं।
3: हाँ भैया।
0: बच्चों अगर तुम दोनों का हो गया हो तो इधर आओ।
4: आ रही हूँ बुआ।
0: आओ बैठो, तुम दोनों मुझसे क्या पढ़ना चाहते हो?
2: बुआ, मीठे सपने नामक कविता पढ़ाइए।
0: दिखाओ दिखाओ, पहले मैं देखती हूँ। अरे सबसे पहले तो यह सुबह की सुंदरता के बारे में कुछ पंक्तियाँ है। अभी तो सुबह है इसलिए इसे अभी पढ़ना उचित है। कविता पढ़ना गद्य पढ़ने जैसा नहीं होता, इसको तूक और छंद के साथ पढ़ना होता है। और कविता के शब्द और वाक्य है वे बहुत सार्थक होते हैं।
2: तो बुआ आप पहले पद पढ़ना सिखाइए और उसके बाद अर्थ समझाइए।
0: हाँ हाँ सुनाती हूँ। तो सुनो, मैं कविता को सही ले और छंद के साथ पढ़ती हूँ।
2: जी बुआ।
0: विहक सुनाते उषा काल में, चहक चहक कर बोली प्यारी, रंग बिरंगे फूल बनाते, छविया कुछ न्यारी न्यारी।
3: वाह बुआ बहुत सुंदर है, आपके आवाज और शब्दों को पढ़ने का ढंग बहुत खूब है।
0: अच्छी है ना कविता? को ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब कविता की इस पद का मूल भाव समझाती हूँ।
2: जी बुआ।
0: अभी सुबह है तो हमने पक्षियों के चहचहाहट की आवाज सुनी।
2: जी सुनी।
0: वो हमें कह रही है कि सवेरा हो गया, उठो और अपने अपने कामों में लग जाओ।
2: बुआ आगे पढ़ाइए।
0: हाँ हाँ पढ़ाती हूँ। अरे सुनो तो।
2: जी बुआ।
0: इतना उत्सुक क्यों हो? तो सुनो, रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, वे सब अपने अलग अलग रूप बना रहे हैं। देखो कितना सुंदर है ना?
3: हाँ बुआ बहुत सुंदर है।
0: सुबह की सुंदरता को देखकर कभी अपने कलम से ऐसा शब्द लिखते हैं जो पढ़ने वालों के मन मोह लेती है।
2: जी बुआ।
0: यह सब प्रकृति की देन है, ये प्रकृति का वर्णन करने में कवि के शब्द भी कम पड़ जाते हैं। विज्ञान भी प्रकृति की सुंदरता पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता।
2: देखिए बुआ, हमारे आंगन में जो पेड़ है उसके पत्ते मंद हवा की झोंकों से हिल रहे हैं।
3: भैया तुमने जो अभी कहा वही शब्द इस कविता में भी है।
0: हाँ हाँ सही है गांधोय, यही कविता में है। चिंखई तुम भी सीख गए हो।
2: नहीं बुआ, मैं तो बस पत्तों की हलचल देख रहा था।
3: फिर भी कुछ तो सीख ही गए हो ना, आगे आप बताइए बुआ।
0: हाँ तो सुनो, आगे की पंक्तियाँ सुनो। मंद हवा के झोंके आते, पत्तों में हलचल आ जाती, बाल सूर्य की आभा आती, सबको मीठे गीत सुनाती। इसका अर्थ हुआ, देखो तुम दोनों, अभी सूरज निकल गया है।
2: जी बुआ।
0: सुबह की सूर्य की किरणें सुनहरी होती है और बहुत सुंदर भी है ना?
2: जी बुआ।
0: मन हवा के झोंके संसार के हर प्राणियों को सूर्य की तेज गर्मी महसूस होने नहीं देते।
2: लेकिन बुआ थोड़ी देर बाद सूरज की गर्मी

0: बहुत तेज हो जाएगी।
1: हाँ, ये बात भी सही है। पहले सुनो, मेरी व्याख्या अभी बाकी है। इन सब को कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि उगता हुआ सूर्य हम सबको मीठे गीत सुनाती है, और ये शब्द ईश्वर की देन है, और इन सब में जान डाल रही है प्रकृति माता।
0: ओह,
1: सुबह में पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना?
2: जी बुआ, बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा गर्मी भी नहीं और ज्यादा ठंड भी नहीं।
1: हाँ, सुबह उठने की आलस भी गायब हो जाती है। मन हवा के झोंके लगते ही शरीर भी ताजा हो जाता है, और पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगता है। तुम विद्यार्थियों को तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, है ना?
0: जी बुआ। बुआ।
1: हाँ बोलो।
0: पिताजी जो प्रातकालीन ब्राह्मण पर गए थे वो वापस आ गए हैं।
1: अच्छा हुआ आप आ गए भैया।
3: हाँ बोलो।
1: मुझे एक काम से मेरी सहेली तोम्बी के घर जाना है, आप जरा बच्चों के साथ।
3: हाँ हाँ, ठीक है, जाओ जाओ।
1: तो भैया मैं अंदर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ।
3: ठीक है। तो बच्चों कहाँ तक पहुँच गए?
0: यहाँ तक पहुँच गए पिताजी। सुबह जल्दी उठ के यहाँ से शुरू करना है पिताजी।
3: अच्छा
2: पिताजी, बुआ तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाती है, मैंने तो कंठस्थ भी कर लिया है।
3: बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी की सुनने की क्षमता अच्छी है, सिर्फ सुनकर ही याद कर लिया। और चिंखई, तुम्हारा क्या तुम्हें सब समझ में आ गया?
0: जी पिताजी, मुझे भी सब समझ में आता है। मैंने जब सुबह के पेड़ पौधों के सुंदरता के बारे में बताया तो बुआ ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब इस कविता में है।
3: अरे वाह, मेरा बेटा तो ज्यादा सीख गए हैं, कहीं बड़े होकर कविता ना लिखने लगे।
0: मैं तो लिखूंगा, सुंदर या खराब पता नहीं, लेकिन लिख तो सकूंगा। पिताजी, मैं बड़े होकर कविता लिखना चाहता हूँ।
3: हाँ जरूर लिखना, अगर मन में ठान ली तो जरूर सफल होंगे। कड़ी मेहनत और धैर्य रखना चाहिए।
2: पिताजी मैं भी लिखूंगी। मैं तो सिर्फ कविता ही नहीं, कहानी और अच्छी नाटक भी लिखूंगी।
3: अरे मेरी बेटी भी लिखेगी?
2: हाँ पिताजी।
3: तब तो मैं दो कवियों का बाप कहलाऊंगा।
0: पिताजी अब आगे की कविता पढ़ाइए।
3: ठीक है, तो सुनो, बचपन तो सीखने का समय होता है, इसी समय तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे का मन तो एक आईना की तरह होती है, जिसमें जो भी पढ़ता है बच्चे वही देखते हैं। बच्चों का मन जिज्ञासा से भरा होता है, इसी समय शिक्षक और माता पिता दोनों ही बच्चों को ज्ञान के प्रकाश से प्रेरित करना चाहिए।
2: पिताजी हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चे तो गिल्ली मिट्टी की तरह होते हैं, इसका मतलब क्या है?
3: तुम्हारे मास्टर जी तुम लोगों को गीली मिट्टी के समान इसलिए कहते हैं क्योंकि गीली मिट्टी तो नरम और लचीली होती है, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। वैसे ही बच्चों को भी माता पिता और शिक्षक अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं।
0: पिताजी इस कविता में भी यही बात है।
3: अच्छा तो पढ़ के सुनाओ।
0: मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हम भी उठते उषा काल में अपने कामों में लग जाते, जल्दी से तैयारी करके सही समय विद्यालय आते।
3: अच्छा तो सुनो, समय का महत्व समझना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए।
0: जी पिताजी।
3: पढ़ाई खत्म करने के बाद खाना खाके सही समय पर स्कूल जाना चाहिए।
0: जी पिताजी।
3: ये सब तुम बच्चों का काम है। स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अनुशासन भी सिखाएंगे।
0: जी पिताजी।
3: तुम विद्यार्थियों को इसका पालन करना है।
2: पिताजी।
3: हाँ बोलो गंधोय।
2: पढ़ लिख कर बड़े बनेंगे ऐसे मीठे सपने बुनते हैं। इसका अर्थ समझाइए।
3: इसका अर्थ है जब तुम स्कूल जाकर पढ़ाई करते हो और तुम्हारी अध्यापक तुम्हें हर पाठ का मतलब समझाकर पढ़ाते हैं तो तुम लोगों को अध्यापक की बातें ध्यान से सुनना चाहिए।
0: जी पिताजी।
3: तभी तुम बड़े आदमी बन पाओगे। ये एक मीठे सपने हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी।
4: जी पिताजी।
5: अजी सुनिए।
3: हाँ हाँ क्या बात है?
5: बच्चों के पढ़ाई हो गई?
3: हाँ हाँ हो गए।
5: अगर हो गए हो तो नहा लीजिए, खाना तैयार है।
3: ठीक है बच्चों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं।
4: जी पिताजी।
3: खाना भी तैयार है, चलो खाना भी खा लेते हैं।
4: जी पिताजी।
0: जी पिताजी।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न है इस कविता में मीठे सपने का अर्थ क्या है फिर से सुनिए इस कविता में मीठे सपने का अर्थ क्या है
0: अचुंबा पाखुम पीबी रखपस सिंगी मनुंगदगी लॉटरी तौरगा खनगतलबा महिरोई सिंगदा अहानबा मना ओइना लुपा चमंगा अनीसुबा अमसुंग अहुमसुबा तारबा सिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ, ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ SMSꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯌꯥ ꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ
2: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯝꯕ꯭ꯔꯤ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯒꯖꯃꯤꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕꯤ ꯖꯦꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

खोंजल नचोम ताबिरी आकाश वानीन फल हौजे कयो की पुंग तारीट मखाई तारी मणिपुरी द पाव ताब फंगबिरगनी।

आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाव पाजरी अहम पाव इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे लिंगर मालेम की मफम कया पाथोनारी सेक्यूरीटी फोर्स बिष्णुपुर जिला की मनु चब कैफा रोड पातोंगी खुसुखलाई के अमरुम फागल कुंतरुक सुब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिफम यादम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की कोनु बिस्केक तुंग्रे इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे लिंगरुक मालेम की मफम कया पाथोनारी ड्रग ओवरडोज सतुना खुदोंथिब नंबसिंदगि कन्ननबा मियाम दा पाक्सना खंगनबगि पानमदा पालन थोरमसि पांगथोकपनी कुमसि सहिगि पालन थोरमसिगि हिरमदि 25 इयर्स ऑन स्टिल नीडेड हाइबसिनी इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे गमरि लेनना फोंगदोक पुवारोलमदा राइजगि हेल्थ सर्विसेस कि डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार नहाय ओपियोट चांग हेन चारबदि ओवरडोज सली मसिदगि कन्ननबा लायेंगबदा नेलोक्सोन हाइब हिदाक मखलम सिजनै हाब हिदाक कुमजा लिंगनी कुनीथ की इसेंशियल ड्रग लिस्ट